सरे अर्श शहनाइयां बज रही है, पए मुस्तफा महफिले सज रही है, मसरत के शह को पयाम आ रहे हैं, खुदा की तरफ से सलाम आ रहे हैं। सजा बाग जन्नत मोहम्मद की खातिर, जली शमे रहमत मोहम्मद की खातिर, हर एक हूर जन्नत की दुल्हन बनी है, सरे राह

जिसने देखी एक झलक रुकी वो शैदा हो गया, एक नजर पड़ते ही हर बीमार अच्छा हो गया। कैसा ही तूफान हो लेकिन पार बेड़ा हो गया, या मोहम्मद उसका हर गम से कनारा हो गया कि जिसके सर पर आप

खान की बख्शिशे उम्मत पे जब शर्ते शहादत लग गई। मरहबा ए फातिमा के लाल हुसैन इब्ने अली, दे दिया सर।

0: को साफ करो, काबे का तवाफ करो, चलो चलो हज का महीना आ गया,
1: चलो चलो हज का महीना आ गया।

0: चुटकी कहेंगी। अपने आप को बहुत चालाक।
1: देखो रवि, बर्दाश्त की भी हद होती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे चुटकी मत कहा करो, अब मैं चुटकी नहीं हूँ।
0: अरे मैं तो अब तक बेखबरी था। सच कहती हो पंजाब की रेशमा, अब तुम चुटकी नहीं रही,

हाँ, मेरा दिल कह रहा है मैं सर से लेके पांव तक तेरे संदली बदन पे मोहब्बत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है मैं तेरे सुर्ख लरसते होठों की लाली पे अपने लबों की शबनमी शरारत लिख दूं। हाँ, मेरा दिल कह रहा है तेरी पाजेब की झंकार पे, तेरे बाहों की चंदन हार पे अपनी बेचैनियों की हालत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है तेरे उलझे गेसू सवारों, इन आंखों के आईने में तेरा दुल्हन सा रूप निहारो। इस महकती जमीन की सेज पे अपने अरमानों की चाहत लिख दूं, मोहब्बत लिख दूं।